गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात छत्रपती संभाजीनगर तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM एक्झॅक्टली आता 7:27 वेळ झालेली आहे आणि आज आहे वार मंगळवार. मंगळवार का दिन है और आज का दिन भी ना तो मंडे का ही जुड़वा भाई होता है. मंडे के दिन कैसा काम का वर्कलोड बढ़ता है और मंगळवार के दिन भी कुछ ऐसा ही हाल होता है. तो बाकी तो बस इस हफ्ते हमें सर्वाइव करना है और अच्छे मूड के साथ सर्वाइव करना है और काम वक्त पर कंप्लीट करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे सो अब कर. तो इसी हिसाब से जो आप कल के ऊपर काम छोड़ते हो ना, तो उसको आज मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कल में कोई दिक्कत ना आए. तो इसी सोच विचार सुविचार के साथ आज के शो का आगाज करते हैं. अजून खूप काही गप्पा गोष्टी मज्जा मस्ती होणार आहे आपल्या शो मध्ये, पण थोड्या वेळानंतर. तोपर्यंत ऐकत राहा NRD सुपर डुपर हिट गाणी विथ RJ अदनान इन द शो ऑल इज वेल.

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: हर रोज हम फोन उठाते हैं, ऑर्डर डिलीवर ये नोटिफिकेशन आता है और बस दो सेकंड के लिए दरवाजा खोलते हैं, पर उस दरवाजे के बाहर जो खड़ा होता है उसकी भी एक कहानी होती है। एक डिलीवरी बॉय था अमन, सुबह 9 बजे घर से निकलता, रात 11 बजे तक गर्मी हो बारिश हो या ट्रैफिक, फोन पर बस एक लाइन ब्लिंक करती है, योर ऑर्डर इज अराइविंग सून। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, रोड पर पानी, कपड़े पूरे भीगे हुए, पर ऐप में टाइम चल रहा था। अमन बाइक साइड में रोककर 10 सेकंड के लिए खुद से बोला, बस यार अब ये लास्ट ऑर्डर, फिर घर चला जाऊंगा। पर मिडिल क्लास घरों में लास्ट ऑर्डर कभी लास्ट नहीं होता। उसने पार्सल डिलीवर किया, दरवाजा एक छोटी सी लड़की ने खोला, पिज्जा देखकर वो खुश हो गई और अंदर भाग गई। अमन मुड़ने ही वाला था तब उस लड़की की मम्मी बाहर आई और बोली, भैया आप पूरे भीग गए हो, चाय पियोगे? सच बताओ उस दिन अमन को चाय से ज्यादा ये लाइन पसंद आई। वो 2 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, हाथ में चाय, आंखों में थोड़ी थकान और दिल में एक अजीब सा सुकून, क्योंकि कभी कभी लोग पैसे से नहीं इज्जत से थकान उतार देते हैं। तो अगली बार जब कोई डिलीवरी बॉय आपके घर आए, सिर्फ पार्सल मत लीजिए, एक स्माइल भी दीजिए, उसे कम से कम पानी का तो पूछिए, क्योंकि उनके बैग में सिर्फ ऑर्डर नहीं होते, घर की जिम्मेदारियां भी होती है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये इमोशंस होती है। सुबह की नींद हो, ऑफिस का स्ट्रेस हो, या फिर बारिश का मूड, या फिर चिलचिलाती गर्मी में भी हम चाय तो पीते ही है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है, और एक कटिंग चाय सब सेट कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम चाय में नहीं है, उसके साथ जो हम खाते हैं ना, उसमें असली गेम होता है। रोज चाय के साथ ऑयली बिस्किट, नमकीन, चिप्स और फ्राइड स्नैक्स, बॉडी क्विकली बोलती है भाई टेस्ट तो अच्छा है पर थोड़ा रहम भी खा ले हम पर। तो सवाल यह है कि चाय के साथ टेस्टी भी और हेल्दी भी ऐसा क्या खा सकते हैं? तो सबसे सिंपल जवाब है रोस्टेड चना। प्रोटीन भी, क्रंच भी, मखाना भी मस्त ऑप्शन है। थोड़ा रोस्ट करो, हल्का मसाला डालो और चाय के साथ फुल हेल्दी वाइब। अगर घर में पोहा, उपमा या बॉइल कॉर्न है तो वो भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। पेट भी भरेगा और एनर्जी भी आएगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाय के साथ जो लोग कहते हैं कि मैं सुट्टा पीता हूँ, ओहो, और या चाय और सुट्टे का मजा जिसे समझ आया उसके लिए सब मोह माया है। ऐसा जो मानते हैं तो भाई तुम कब मोह माया में खो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। चाय के साथ जो सुट्टा पीते ना, तो उनकी लाइफ बहुत डेंजर चल रही है। इस वजह से सुट्टा अवॉइड कीजिएगा, बस चाय पीजिएगा। अब मैं कितना भी बोलूं आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम है बताना, वही मैं बता रहा हूँ, वरना एक दिन धुएं के साथ आप भी उड़ जाओगे। और हाँ, ड्राई फ्रूट को इग्नोर मत करो, दो बादाम, थोड़े पीनट्स या वॉलनट, चाय का लेवल भी क्लासी और हेल्थ भी एकदम परफेक्ट रहेंगी। मतलब जब आप चाय पीते हो तो उस वक्त आप ये सब कुछ खा सकते हो आफ्टर चाय, ताकि पूरा मैनेज रहे आपका सिस्टम। और बाकी मुस्कान की चमकान बरकरार रखो, हेल्दी रहो और सुनते रहो।

0: सभी की जिंदगी ऑल इज वेल है, लेकिन थोड़े बहुत स्ट्रेस आते हैं, तो वो दूर करने के लिए बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। ऑल इज वेल ऑन MGM 90.8 FM एंड मेंटल हेल्थ वेल, तो जिंदगी ऑल इज वेल में बात करने वाले हम डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम के साथ, जो कि HOD है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम के साथ हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम, अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि वो स्ट्रेस में है, तो उसके अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं?
1: हम देखिए तीन चीजों से पहचान सकते हैं। पहला है फिजिकल, कि जैसे लगातार सर दर्द होना या एसिडिटी रहना या गर्दन, कंधे, पेट में दर्द रहना, तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। थका हुआ महसूस करना, शरीर में भारीपन लगना, ये भी कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। दूसरा है देखिए हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स, जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, काम में मन नहीं लगना या ज्यादा नींद आना। जैसे कुछ लोग ऑफिस में आते ही उनको लगता है अरे बहुत नींद आ रही है। अब देखिए इसके भी दो कारण है, कि सच में उनकी नींद नहीं हुई है, क्योंकि शायद वो घर पे भी ऑफिस का काम लेके बैठे हों, और फिर दूसरा है कि ये स्ट्रेस का अर्ली साइन भी माना जा सकता है। और तीसरा है देखिए कॉग्निटिव, कि हमारा फोकस जो है वो कम होना, तो फोकस करने में दिक्कत आना और कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना, फिर हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना, ये सब कॉग्निटिव चीजें हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेस की अर्ली साइंस है।
0: तो आप में से भी ऐसा किसी को लग रहा है कि यार वो स्ट्रेस में है और उसके अंदर जो साइन अभी मैम ने बताए वैसे नजर आ रहे हो, तो भाई थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिएगा और हेल्थ को वेल रखिएगा, बाकी मुस्कान की चमकान बरकरार रखिए और जिंदगी में इतना स्ट्रेस मत बढ़ाइएगा कि आपकी हेल्थ खराब हो, क्योंकि हेल्थ वेल रहेगी तो सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा। स्टे ट्यून।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजी अदनान और आप सुन रहे हो आपका पसंदीदा शो ऑल इज वेल ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और इस वक्त ना तो हम आपकी महफिल सजाते फरमाइशों के साथ आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज हमारे पास फरमाइश आई है प्रेम काले जी की तरफ से। उन्होंने एक बहुत ही खास बेहतरीन सा सदाबहार गाना फरमाइश में बताया है, जो पेश है फिल्म कर्ज का सुपरहिट गाना ओम शांति ओम।

0: ऋषि कपूर जी की वो जादुई अदा और किशोर कुमार जी की आवाज। चलिए खो जाते इस क्लासिकल धुन में, सच में ये गाना ना तो महफिल सजा ही देता है। बाय द वे आपकी भी कोई गाने की फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर 9359320080। फिलहाल फरमाइश पर ये गाना एंजॉय कीजिए एंड सुनते रहिए।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

फिलहाल पेट्रोल डीजल की बात करें तो थोड़ी राहत पेट्रोल वालों को मिल चुकी है। योर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। सुबह उठते पहला टेंशन आता है कि भाई आज पेट्रोल या डीजल मिलेगा या नहीं। हालांकि फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि पेट्रोल अवेलेबल है और लंबी लाइनें पेट्रोल के लिए लगी नहीं है पेट्रोल पंप के ऊपर, लेकिन डीजल का अभी भी 19-20 चल रहा है। कहीं डीजल अवेलेबल है तो कहीं डीजल पूरा खत्म हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो डीजल के लिए कार की लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आएगी और ये प्रॉपर तरीके से कब लाइन खत्म होगी तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी से स्टॉक आ जाएगा तो ये लाइनें भी कम हो जाएगी। लेकिन पेट्रोल का स्टॉक अच्छे खासे तरीके से है, इस वजह से पेट्रोल भरने के लिए आपको लाइन में खड़े रहने की अब जरूरत नहीं है ज्यादा लंबी। और जब इसका शॉर्टेज हो गया था ना तो लोग फुल टंकी अपनी कर रहे थे पेट्रोल की भी, अब लोगों को समझ आ गया फुल करके कोई जरूरत नहीं है, जितना पेट्रोल चाहिए उतना ही हम यूज करेंगे, इस वजह से जरूरत है उतना ही लोग पेट्रोल भर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। बाकी डीजल की बात करें तो अब ये कब तक इनका शॉर्टेज रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ये तो मुझे भी नहीं पता। प्रशासन कहती है कि डीजल तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। बाकी मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जितनी जरूरत है उतना ही पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में भरिए, ताकि आपको भी और बाकी लोगों को भी पेट्रोल डीजल मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिडाता, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।

0: भ्रष्टाचार कहाँ नहीं चलता है, हर एक जगह ये चलता है, चाहे छोटी बात हो कि बड़ी बात हो। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। एसटी महामंडळाने स्मार्ट डिजिटल कार्ड सुरू केलेले आहे, ज्या प्रवाशांना काही सवलती आहे त्यांच्यासाठी हे स्मार्ट कार्ड आहे। और ये स्मार्ट कार्ड निकालने के लिए आपको 199 रुपये पे करना पड़ते है और आपका कार्ड आपको मिल जाएगा एक महीने के अंदर। तो रेट है 199 रुपये। अपनी सीट को बस स्टैंड के ऊपर तकरीबन 230 से 300 रुपये वसूल किए जा रहे हैं एक कार्ड के, जो कि 199 रुपये में कार्ड आता है। एक एजेंट ने कहा है कि कार्ड एक्टिवेशन के लिए 30 रुपये लगते हैं, कुरियर चार्जेस होता है, बाकी भी काम होते हैं, तो इस वजह से हम 30 रुपये एक्स्ट्रा वसूल करते हैं। चलो ठीक है, मान लिया 199 का कार्ड 230 में मिलेगा, लेकिन 300 रुपये क्यों वसूल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। आणि जे एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रक अधिकारी आहेत त्यांना विचारलं तर ते सांगतायत की आमच्यापर्यंत आता एकही कंप्लेंट आलेली नाही, जेव्हा कंप्लेन येईल तेव्हा आम्ही कारवाई करू। मतलब भाई, नीचे से ऊपर तक इसमें सभी का हिस्सा है, इस वजह से ये एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर रहे। तो वही ना, चाहे फिर छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो, भ्रष्टाचार हर एक जगह चलता है। ऑफिसर लोगों को पता नहीं होगा क्या? सबको पता होता है, लेकिन कहेगा कोई नहीं, क्योंकि जबान पर पैसों का लॉक लगा है, समझे? स्टे ट्यून्ड।
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

हमें लगता है कि हमारा इंडिया बस पॉपुलेशन के अंदर ही ग्रोथ कर रहा है, लेकिन नहीं, एक काम ऐसा भी है जहाँ इंडिया दुनिया को एग्जांपल दे रहा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना इंडिया अपने टोटल प्लास्टिक वेस्ट का ऑलमोस्ट 60% रिसाइकल करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसे कंट्रीज भी इस नंबर से काफी पीछे है। मतलब जो प्लास्टिक बॉटल आप यूज करके फेंक देते हो उसमें से बहुत सारा प्लास्टिक दोबारा नया प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, कन्वर्ट होता है। अब गवर्नमेंट भी और स्ट्रिक्ट रूल्स ला रही है कि कंपनीज को बोला गया है कि जितना भी प्लास्टिक मार्केट में भेजोगे उतना रिसाइकलिंग करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जरूरत है। और एक गुड न्यूज और है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोप्लास्टिक बैग्स को प्रमोट करने के लिए जीएसटी भी कम किया गया है ताकि लोग प्लास्टिक से अच्छा कोई और बैग यूज करें जिससे एनवायरमेंट को खतरा ना हो। अगर अपना इंडिया इतने बड़े लेवल पर रिसाइकलिंग कर रहा है तो हम भी अपने घर से एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हैं कि प्लास्टिक आप कहीं भी मत फेंकिएगा, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजिएगा और उससे कुछ नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इस मुहिम के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हो। सो अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने इंडिया को प्लास्टिक फ्री और रिसाइकलिंग में सबसे ऊपर ले जा सकते हो। सो ये कदम आप भी उठाइए और बाकी सुनते रहिए।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

सिडको बस स्टैंड अपना क्या हालत में है यार, कितनी हाल बेहाल हो गई, अब इसके हाल सुधरने वाले हैं। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM और नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के पहले वीक से अपना सिडको बस स्टैंड शिफ्ट होने वाला है चिकल थाना वर्कशॉप में। हाँ, जहाँ पर ST का जो वर्कशॉप है उस जगह पर चिकल थाना बस स्टैंड कुछ साल के लिए शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि सिडको बस स्टैंड का मेंटेनेंस का काम शुरू है और पूरी तरीके से मतलब या बस स्टैंड से काया पलट होना रहे आने आपल्याला नवीन प्रकारे सिडको बस स्टैंड काही वर्षात बघायला मिळेल। तोपर्यंत सर्व बसेस ना या चिकलठाणा वर्कशॉप मधून येणार आणि जाणार आहेत, त्यामुळे ही सर्वात महत्त्वाची अपडेट आहे, ते लक्षात ठेवा। और हां, जिस तरीके से सिडको बस स्टैंड का भी काम होने वाला है तो उसी तरीके से सेंट्रल बस स्टैंड का भी काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है सेंट्रल बस स्टैंड के हाल कितने खराब हो चुके। आप अगर वहां से जाओगे तो पहले आपका स्वागत होगा खड्डों से, उसके बाद स्वागत होगा जो छत है उसका कुछ ना कुछ प्लास्टर गिरने से, बाकी आपकी जिम्मेदारी के साथ आप उस बस स्टैंड में बैठ सकते हो। कब ऊपर का स्लैब नीचे गिरेगा, कुछ पत्थर गिरेगा पता ही नहीं। हो सके तो ऐसा सेंट्रल बस स्टैंड का भी काम कर दीजिएगा ताकि दोनों बस स्टैंड एकदम सुंदर सुंदर सुंदर खूबसूरत हमें नजर आए। स्टे ट्यून्ड।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट MGMU.AC.IN और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8889 2688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: कागद पेन नाही या वेळी, मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे, विवरण आणि

0: जीटी अपडेट में बहुत ही बढ़िया और टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक अपडेट है अपने शहर के लिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। ऑल इज वेल ऑन MGM 90.8 FM। अब अपनी बिजली का बिल भी और अपनी महावितरण भी स्मार्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महावितरण ला रहा है स्मार्ट मीटर का नेक्स्ट लेवल अपडेट। अब अगर किसी एरिया में पावर कट हुआ तो सिस्टम खुद बता देगा कि फॉल्ट कहां पर है। मतलब आप कंप्लेंट करने के लिए किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। कॉल करने के बावजूद भी सामने वाले महावितरण के कर्मचारी कॉल कुछ उठाते नहीं थे। और सुनो, ये स्मार्ट मीटर ना अब तक अपने शहर में 32% फिट कर दिए हैं और बचे हुए भी जितने भी एरिया में ये स्मार्ट मीटर रहेगी वो जल्द से जल्द बिठाने का काम शुरू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्मार्ट मीटर ओवरलोड भी डिटेक्ट करेंगे। मतलब घर में एक साथ एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चार्जर या टीवी ऑन है तो मीटर बोलेगा, भाई बस कर, मैं भी इंसान हूँ। मतलब उसके ऊपर भी लोड आता है ना। और हाँ, महावितरण का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा नहीं आएगा, वरना लोगों का ऐसा मानना था कि स्मार्ट मीटर बिठाएंगे तो बिल बहुत बढ़ेगा। लेकिन घर पर ज्यादा लोड होगा तो भाई बिजली का बिल तो बढ़ेगा ही ना। यानी कि टेक्नोलॉजी तो फास्ट हो रही है, बस अब एक ही दुआ है, बिजली जाने से पहले व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाए तो एक बढ़िया होगा। ऐसा भी अगर कुछ सिस्टम निकाल दिया ना, धन्य हो जाएंगे हम महावितरण के लिए। स्टे ट्यून। All is well on the Nanaka morning show. Freshness light radio ka flow on MGM 90.8 FM.
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM Campus N6 Sirco, Chhatrapati, संभाजीनगर।

आपके बस दो मिनट ही लूंगा, लेकिन इससे ना तो किसी की जिंदगी बच सकती है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सबके पास ऑप्शंस है, एसी, कूलर, फ्रिज, ठंडा पानी सब कुछ है, पर कभी सोचा है उन छोटे परिंदों के बारे में जो दिन भर इस तेज धूप में उड़ते रहते हैं? ना कोई छत, ना कोई पानी का जग, बस आसमान और गर्मी। और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो लिटरली प्यास से मर जाते हैं। दोस्तों, ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल ना तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो कि बिना पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम आपने उठाया और मैंने उठाया, तो ऐसे हजारों परिंदे हैं जो कि बच सकते हैं इस गर्मी में और उनकी जान भी बच सकती है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर या छत पर एक छोटी सी प्लेट या मिट्टी का बर्तन रखना है जिसमें पानी रखना है, और पॉसिबल हो तो थोड़ा दाना भी रख सकते हो जो कि परिंदे खा सकते हैं खाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी एक चिड़िया की जान बच जाएगी इस छोटे से कदम की वजह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह काम ना महंगा है ना मुश्किल है, बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। हर किसी के घर के बाहर थोड़ी जगह होती है, छत होता है या तो फिर बालकनी होती है, खिड़की होती है, वहाँ पर बस एक प्लेट में या छोटी कटोरी में भी आपने पानी रख दिया तो उस वजह से परिंदों की जिंदगी बच सकती है और इस गर्मी में उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और यही चीज आप फॉलो कर सकते हो अपने घर के बाहर भी बाकी जानवरों के लिए एक बकेट में पानी रखकर। आपका छोटा इंसानियत का कदम किसी की जिंदगी बचाएगा। सो प्लीज यार, इतना काम आप कीजिएगा और किसी की जान बचाइएगा। और सुनते रहना

सुंदर फिल्म का ये गाना 30 साल पुराना है। ये गाना बॉम्बे रॉकर्स इस बैंड ने बनाया जो कि यूरोप में शुरू हुआ था पंजाबी और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके। बैंड के सिंगर नवजोत सिंह जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उनकी मुलाकात हुई म्यूजिशियन थॉमस से। फिर आगे चलकर उन्होंने अपने बैंड का पहला एल्बम रिलीज किया। देश विदेश में उनके गाने बहुत पॉपुलर होने लगे, लेकिन एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं उनके गाने फीके पड़ने लग गए, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई। फिर धुरंधर फिल्म के जरिए उन्हें एक ऐसा चांस मिला फिर से कमबैक करने का उनके पहले

0: Sanskrit, French, German, Urdu, Japanese, Persian and translation.
1: Limited seats available. Visit www.mgmu.ac.in or call kare 9763679245 or 9665353515.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।

0: अब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़ा, मानसिक आजार लपवायची नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. Tasech LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।
5: कागद पेन नाही या वेळी, मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे, विवरण आणि

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: से बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: कागद पेन नहीं या वेड़ी, मोबाइल सा नवा उपक्रम आए, विवरण आनी मा

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
2: हम राह

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, लेकर आई हूँ एक प्यारी सी हैप्पी इवनिंग। शाम का समय दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। पूरा दिन भागदौड़, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में निकल जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है दिल थोड़ा आराम ढूंढने लगता है। हल्की ठंडी हवा, चाय की खुशबू और अपने लोगों की बातें, बस यही छोटी छोटी चीज़ें शाम को खास बना देती है। तो दोस्तों, आज के शाम को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाइए। फ़ोन को थोड़ी देर साइड में रखिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों से बातें कीजिए या फिर अपनी पसंद का संगीत सुनिए, क्योंकि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजह नहीं चाहिए। कभी कभी एक प्यारी सी मुस्कान और सुकून भरी शाम भी काफी होती है। अगर आपका दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए और इस शाम को एक नई शुरुआत की तरह महसूस कीजिए। याद रखिए, हर शाम हमें ये बताती है कि कल फिर एक नया और बेहतर दिन हमारा इंतजार कर रहा है। तो सुकून से वेट कीजिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात।

है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। लेकर आई हूँ एक छोटी सी दिल को छू लेने वाली बात। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। लोग अलग अलग सलाह देते हैं, हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन इन सब के बीच एक आवाज़ ऐसी होती है जो हमेशा सच बोलती है और वो हमारी इनर फीलिंग होती है, यानी हमारी दिल की आवाज़। कई बार हमारा मन पहले ही बता देता है कौन सा रास्ता सही है, बस हम डर या लोगों की बातों की वजह से उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच कहो, जब भी आपने अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया होगा, कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता ज़रूर मिला होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे फैसले ले, लेकिन खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया आपको रास्ते दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको ही होता है। अगर आपका दिल किसी काम को करने के लिए बार बार कहता है, अगर कोई सपना आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा, तो शायद वो आपकी ज़िंदगी का सही इशारा हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरों की सुनिए ज़रूर, लेकिन अपने दिल की आवाज़ को कभी दबाइए मत। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखिए, क्योंकि कई बार वही हमारी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। स्टे ट्यून्ड, टाइम जिम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। लेकर आई हूँ दिल को सुकून देने वाली एक प्यारी सी बात। आज की दुनिया में हर कोई तेज भाग रहा है, हर कोई सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में कई बार हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, अंदर की अच्छाई यानी इनर काइंडनेस। अच्छा इंसान बनना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है, दिल के सुकून के लिए भी बहुत ज़रूरी है। किसी से प्यार से बात करना, किसी उदास इंसान को मुस्कुरा देना, बिना मतलब किसी की मदद करना, ये छोटी छोटी बातें ही इंसान को बड़ा बनाती है। कभी कभी हम बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर गुस्सा, जलन या तनाव जमा होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर रुके और खुद के लिए दुआ करें, ऐसी दुआ जो हमें और ज़्यादा शांत, अच्छा और दयालु इंसान बनाती है। तो प्रे कीजिए, सिर्फ सफलता या पैसा ही नहीं तो एक साफ दिल और काइंडनेस भी मांगिए दुआओं में, क्योंकि अच्छा दिल ही रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। इसी प्यारी से सोच के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, और भी कई सारी बातें शो में जारी रहेगी ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus it's LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshi tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: कागद पेन नाही या वेळी, मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे, विवरण आणि मा

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। लेकर आई हूँ एक ऐसे गाने की बात जो दिल की भावनाओं को खूबसूरती से बयां करता है। कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो सीधे दिल को महसूस होते हैं और ऐसा ही एक एहसास देता है ये प्यारा सा गाना आईना है मेरा चेहरा। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी आईना। आईना सिर्फ हमारी शक्ल नहीं दिखाता बल्कि कई बार हमारी असली भावनाओं को भी दिखाता है। जब हम खुश होते हैं तो चेहरा खुद ब खुद चमक उठता है और जब दिल उदास हो तो वो भी आंखों में दिखाई देता है। इस गाने के बोल हमें यही एहसास दिलाते हैं कि इंसान की सच्चाई और उसके जज्बात चेहरे से छुप नहीं सकते। कभी प्यार, कभी इंतजार, तो कभी किसी की याद, हर भावना चेहरे पर साफ नजर आती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल की बातें आखिर कब तक छुपी रहती है? एक छोटी सी मुस्कान या एक खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। तो अगर आपके दिल में भी कोई खास एहसास हो या कोई याद हो, कोई सपना हो, किसी अपने की बात हो, तो खूबसूरत गाने के साथ उसे महसूस कीजिए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम नाडी पॉनी फिल्म साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्याचा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आयओटी, साइबर सिक्युरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिझाईन and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus in 6th Circle, Chhatrapati Sambhajinagar.

छोटी सी लेकिन बहुत ही बड़ी बात। दोस्तों, करेले का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बनाने लगते हैं, क्योंकि इसका स्वाद भले ही कड़वा हो लेकिन इसके फायदे बहुत ही मीठे होते हैं, मतलब हेल्दी होते हैं। और खासकर करेले का जूस सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नेचुरल टॉनिक जैसा काम करता है। करेले में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं। बहुत से लोग इसे सुबह खाली पेट पीना पसंद करते हैं ताकि दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से हो सके। अगर आप फिट और एक्टिव रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में करेले का जूस थोड़ा कड़वा ज़रूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर को इसकी आदत बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन सही नहीं होता। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। याद रखिए, अच्छी सेहत कोई एक दिन में नहीं बनती, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमें लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रखती है। स्टेडियम टाइम जिम नाड़ी पॉन एडिफिल्म साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, लेकर आई हूं गर्मियों में सेहत का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी बात। गर्मी का मौसम आते ही शरीर जल्दी थकने लगता है। तेज धूप, पसीना और गर्म हवाएं हमारी एनर्जी को कम कर देती है। ऐसे मौसम में ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों को खाना जो शरीर को ठंडक और ताजगी दे, और उन्हीं में से एक है लौकी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे लौकी भी कोई पसंद करने वाली चीज़ है भला? लेकिन दोस्तों, लौकी भले ही सिंपल दिखाई देती हो, इसके फ़ायदे बहुत शानदार है। लौकी

0: समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ति पुरुष और महिला अंतर रुग्ण सुविधा उपलब्ध। आज भेट दिया
1: उत्कर्ष क्लिनिक हर्सुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जलगांव रोड छत्रपति संभाजीनगर अंतर रुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपति संभाजीनगर। कॉन्टैक्ट ऑन 8889 2688।
2: क्या आप इंग्लिश फ्रेंच जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक संस्कृत मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश एमए इंग्लिश एमए मराठी एमए हिंदी एमए उर्दू एमए संस्कृत पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जापानीज पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप टेस्टी स्टार्टर्स मलाई टिक्का कबाब चिकन तंदूरी मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी रूफटॉप एम्बियंस अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर बीड बाईपास रोड छत्रपति संभाजीनगर।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, लेकर आई हूँ दिल को छू लेने वाली बहुत ही खास बात। हम अपनी जिंदगी में सबका ख्याल रखते हैं, परिवार, दोस्तों, काम, जिम्मेदारियां, सबके लिए समय निकालते हैं, लेकिन कई बार इस बीच हम खुद को ही भूल जाते हैं। और जब कभी हम अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, तो मन में एक गिल्ट आ जाता है, जैसे हम कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन सच कहो, खुद से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। अपने लिए थोड़ा आराम लेना, अपनी मन पसंदीदा चीज़ करना, अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखना, ये सेल्फिश नहीं होता बल्कि ज़रूरी होना है। क्योंकि जब आप अंदर से खुश और मजबूत होंगे, तभी दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। खुद को महत्व देना सीखिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए, अपनी मेहनत की तारीफ कीजिए और खुद के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। हर इंसान प्यार डिजर्व करता है और उस प्यार की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी कीमत समझेंगी नहीं। तो इसलिए बिना गिल्टी फील हुए खुद को अपनाइए, अपनी खुशियों को ख्याल रखिए। एंड ऑफ कोर्स रेडियो 90.9 FM साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रजाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करियर गाइडन्स प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचंय, मग जाणून घ्या लॉ एंट्रन्स एग्जाम, हायर एज्युकेशन एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज। तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:00 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174126।
6: कागद पेन नहीं या वेड़ी, मोबाइल सा नवा उपक्रम आए, विवरण आनी मा

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.

आखिर आ ही गया वो पल जब हमें आपसे कुछ देर के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। दिस इज आर जे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 एफएम। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ विदाई नहीं बल्कि अगली मुलाकात का एक प्यारा सा वादा भी है। आज का ये सफर आपके साथ बहुत खूबसूरत रहा। बातों ही बातों में हंसी भी हुई, कुछ प्यारी सी यादें भी बनी और दिल से जुड़ी कई बातें भी शेयर हुई। उम्मीद है कि

0: हमारे साथ बिताए हुए ये समय आपके चेहरे पर हंसी मुस्कान लेकर आए होंगे। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना मत भूलिए। खुश रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते रहिए। अगर कभी मन उदास हो तो याद रखिए, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। बस खुद पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस प्यार के साथ हम फिर लौटेंगे नई बातें, नए गाने और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, आयओटी, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट एमजीएम कॅम्पस एन6 सिडको छत्रपती संभाजीनगर।

गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजी अदनान और आप सुन रहे हो आपका पसंदीदा शो ऑल इज वेल ऑन MGM 90.8 FM। और इस वक्त ना तो हम आपकी महफिल सजाते फरमाइशों के साथ आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज हमारे पास फरमाइश आई है प्रेम काले जी की तरफ से। उन्होंने एक बहुत ही खास बेहतरीन सा सदाबहार गाना फरमाइश में बताया है, जो पेश है फिल्म कर्ज का सुपरहिट गाना ओम शांति ओम।

0: फिलहाल पेट्रोल डीजल की बात करें तो थोड़ी राहत पेट्रोल वालों को मिल चुकी है। योर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। सुबह उठते पहला टेंशन आता है कि भाई आज पेट्रोल या डीजल मिलेगा या नहीं। हालांकि फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि पेट्रोल अवेलेबल है और लंबी लाइनें पेट्रोल के लिए लगी नहीं है पेट्रोल पंप के ऊपर, लेकिन डीजल का अभी भी 19-20 चल रहा है। कहीं डीजल अवेलेबल है तो कहीं डीजल पूरा खत्म हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो डीजल के लिए कार की लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आएगी और ये प्रॉपर तरीके से कब लाइन खत्म होगी तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी से स्टॉक आ जाएगा तो ये लाइनें भी कम हो जाएगी। लेकिन पेट्रोल का स्टॉक अच्छे खासे तरीके से है, इस वजह से पेट्रोल भरने के लिए आपको लाइन में खड़े रहने की अब जरूरत नहीं है ज्यादा लंबी। और जब इसका शॉर्टेज हो गया था ना तो लोग फुल टंकी अपनी कर रहे थे पेट्रोल की भी, अब लोगों को समझ आ गया फुल करके कोई जरूरत नहीं है, जितना पेट्रोल चाहिए उतना ही हम यूज करेंगे, इस वजह से जरूरत है उतना ही लोग पेट्रोल भर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। बाकी डीजल की बात करें तो अब ये कब तक इनका शॉर्टेज रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ये तो मुझे भी नहीं पता। प्रशासन कहती है कि डीजल तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। बाकी मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जितनी जरूरत है उतना ही पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में भरिए, ताकि आपको भी और बाकी लोगों को भी पेट्रोल डीजल मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कल

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

को ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर।

करूं चाहे फूलों के साए तके।

भ्रष्टाचार कहा नहीं चलता है, हर एक जगह ये चलता है, चाहे छोटी बात हो कि बड़ी बात हो। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। एसटी महामंडळाने स्मार्ट डिजिटल कार्ड सुरू केलेले आहे, ज्या प्रवाशांना काही सवलती आहे त्यांच्यासाठी हे स्मार्ट कार्ड आहे। और ये स्मार्ट कार्ड निकालने के लिए आपको 199 रुपये पे करना पड़ते है और आपका कार्ड आपको मिल जाएगा एक महीने के अंदर। तो रेट है 199 रुपये। अपनी सीट को बस स्टैंड के ऊपर तकरीबन 230 से 300 रुपए ये वसूल किए जा रहे हैं एक कार्ड के, जो कि 199 रुपए में कार्ड आता है। एक एजेंट ने कहा है कि कार्ड एक्टिवेशन के लिए 30 रुपए लगते हैं, कुरियर चार्जेस होता है, बाकी भी काम होते हैं, तो इस वजह से हम 30 रुपए एक्स्ट्रा वसूल करते हैं। चलो ठीक है, मान लिया 199 का कार्ड 230 में मिलेगा, लेकिन 300 रुपए क्यों वसूल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। आणि जे एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रक अधिकारी आहेत त्यांना विचारलं तर ते सांगतायत की आमच्यापर्यंत आता एकही कंप्लेंट आलेली नाही आहे, जेव्हा कंप्लेंट येईल तेव्हा आम्ही कारवाई करू। मतलब भाई, नीचे से ऊपर तक इसमें सभी का हिस्सा है, इस वजह से ये एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर रहे हैं। तो वही ना, चाहे फिर छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो, भ्रष्टाचार हर एक जगह चलता है। ऑफिसर लोगों को पता नहीं होगा क्या? सबको पता होता है, लेकिन कहेगा कोई नहीं, क्योंकि जबान पर पैसों का लॉक लगा है, समझे? स्टे ट्यून।

0: मिलकर भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिडाता, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रजाळेपणा, व्यसन रीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ति पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करियर गाइडन्स प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचंय मग जाणून घ्या। लॉ एंट्रन्स एग्जाम, हायर एज्युकेशन एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:00 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174126।
6: कागद पेन नाही या वेळी, मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे, विवरण आणि मा

हमें लगता है कि हमारा इंडिया बस पॉपुलेशन के अंदर ही ग्रोथ कर रहा है, लेकिन नहीं, एक काम ऐसा भी है जहाँ इंडिया दुनिया को एग्जाम्पल दे रहा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। आप

0: इंडिया अपने टोटल प्लास्टिक वेस्ट का ऑलमोस्ट 60% रिसाइकल करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसे कंट्रीज भी इस नंबर से काफी पीछे है। मतलब जो प्लास्टिक बॉटल आप यूज करके फेंक देते हो उसमें से बहुत सारा प्लास्टिक दोबारा नया प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, कन्वर्ट होता है। अब गवर्नमेंट भी और स्ट्रिक्ट रूल्स ला रही है कि कंपनीज को बोला गया है कि जितना भी प्लास्टिक मार्केट में भेजो उतना रिसाइकलिंग करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जरूरत है। और एक गुड न्यूज और है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोप्लास्टिक बैग्स को प्रमोट करने के लिए जीएसटी भी कम किया गया है ताकि लोग प्लास्टिक से अच्छा कोई और बैग यूज करें जिससे एनवायरमेंट को खतरा ना हो। अगर अपना इंडिया इतने बड़े लेवल पर रिसाइकलिंग कर रहा है तो हम भी अपने घर से एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हैं कि प्लास्टिक आप कहीं भी मत फेंकिएगा, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजिएगा और उससे कुछ नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इस मुहिम के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हो। अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने इंडिया को प्लास्टिक फ्री और रिसाइकलिंग में सबसे ऊपर ले जा सकते हो। सो ये कदम आप भी उठाइए और बाकी सुनते रहिए।
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar. Lit it.

सिडको बस स्टैंड अपना क्या हालत में है यार, कितनी हाल बेहाल हो गई, अब इसके हाल सुधरने वाले हैं। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM और नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के पहले वीक से अपना सिडको बस स्टैंड शिफ्ट होने वाला है चिकल थाना वर्कशॉप में। हाँ, जहाँ पर ST का जो वर्कशॉप है उस जगह पर चिकल थाना बस स्टैंड कुछ साल के लिए शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि सिडको बस स्टैंड का मेंटेनेंस का काम शुरू है और पूरी तरीके से मतलब या बस स्टैंड से काया पलट होना रहे आने आपल्याला नवीन प्रकारे सिडको बस स्टैंड काही वर्षात बघायला मिळेल। तोपर्यंत सर्व बसेस ना या चिकलठाणा वर्कशॉप मधून येणार आणि जाणार आहेत, त्यामुळे ही सर्वात महत्त्वाची अपडेट आहे, ते लक्षात ठेवा। और हां, जिस तरीके से सिडको बस स्टैंड का भी काम होने वाला है तो उसी तरीके से सेंट्रल बस स्टैंड का भी काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है सेंट्रल बस स्टैंड के हाल कितने खराब हो चुके। आप अगर वहां से जाओगे तो पहले आपका स्वागत होगा खड्डों से, उसके बाद स्वागत होगा जो छत है उसका कुछ ना कुछ प्लास्टर गिरने से। बाकी आपकी जिम्मेदारी के साथ आप उस बस स्टैंड में बैठ सकते हो, कब ऊपर का स्लैब नीचे गिरेगा, कुछ पत्थर गिरेगा पता ही नहीं। हो सके तो ऐसा सेंट्रल बस स्टैंड का भी काम कर दीजिएगा, ताकि दोनों बस स्टैंड एकदम सुंदर सुंदर सुंदर खूबसूरत हमें नजर आए। स्टे ट्यून्ड।

अपडेट में बहुत ही बढ़िया और टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक अपडेट है अपने शहर के लिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। All is well. अब अपनी बिजली का बिल भी और अपनी महावितरण भी स्मार्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महावितरण ला रहा है स्मार्ट मीटर का नेक्स्ट लेवल अपडेट। अब अगर किसी एरिया में पावर कट हुआ तो सिस्टम खुद बता देगा कि फॉल्ट कहां पर है। मतलब आप कंप्लेंट करने के लिए किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। कॉल करने के बावजूद भी सामने वाले महावितरण के कर्मचारी कॉल कुछ उठाते नहीं थे। और सुनो, ये स्मार्ट मीटर ना अब तक अपने शहर में 32% फिट कर दिए है, और बचे हुए भी जितने भी एरिया में ये स्मार्ट मीटर रहेगी वो जल्द से जल्द बिठाने का काम शुरू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्मार्ट मीटर ओवरलोड भी डिटेक्ट करेगा। मतलब घर में एक साथ एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चार्जर या टीवी ऑन है तो मीटर बोलेगा, भाई बस कर, मैं भी इंसान हूँ। मतलब उसके ऊपर भी लोड आता है ना। और हाँ, महावितरण का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा नहीं आएगा, वरना लोगों का ऐसा मानना था कि स्मार्ट मीटर बिठाएंगे तो बिल बहुत बढ़ेगा। लेकिन घर पर ज्यादा लोड होगा तो भाई बिजली का बिल तो बढ़ेगा ही ना। यानी कि टेक्नोलॉजी तो फास्ट हो रही है, बस अब एक ही दुआ है, बिजली जाने से पहले व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाए तो एक बढ़िया होगा। ऐसे भी अगर कुछ सिस्टम निकाल दिया ना, धन्य हो जाएंगे हम महावितरण के लिए। स्टे ट्यून।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MCM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

आपके बस दो मिनट ही लूंगा, लेकिन इससे ना तो किसी की जिंदगी बच सकती है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सबके पास ऑप्शंस है, एसी, कूलर, फ्रिज, ठंडा पानी, सब कुछ है। पर कभी सोचा है उन छोटे परिंदों के बारे में जो दिन भर इस तेज धूप में उड़ते रहते हैं? ना कोई छत, ना कोई पानी का जग, बस आसमान और गर्मी। और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो लिटरली प्यास से मर जाते हैं। दोस्तों, ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल ना तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो कि बिना पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम आपने उठाया और मैंने उठाया, तो ऐसे हजारों परिंदे हैं जो कि बच सकते हैं इस गर्मी में, और उनकी जान भी बच सकती है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर या छत पर एक छोटी सी प्लेट या मिट्टी का बर्तन रखना है जिसमें पानी रखना है, और पॉसिबल हो तो थोड़ा दाना भी रख सकते हो जो कि परिंदे खा सकते हैं खाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी एक चिड़िया की जान बच जाएगी इस छोटे से कदम की वजह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम ना महंगा है ना मुश्किल है, बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। हर किसी के घर के बाहर थोड़ी जगह होती है, छत होता है या तो फिर बालकनी होती है, खिड़की होती है, वहाँ पर बस एक प्लेट में या छोटी कटोरी में भी आपने पानी रख दिया तो उस वजह से परिंदों की जिंदगी बच सकती है और इस गर्मी में उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और यही चीज आप फॉलो कर सकते हो अपने घर के बाहर भी बाकी जानवरों के लिए एक बकेट में पानी रखकर। आपका छोटा इंसानियत का कदम किसी की जिंदगी बचाएगा। सो प्लीज यार, इतना काम आप कीजिएगा और किसी की जान बचाइएगा। और सुनते रहना

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करियर गाइडेंस प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचे मग जाणून घ्या। लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हायर एज्युकेशन एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:30 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174124।

सुंदर फिल्म का ये गाना 30 साल पुराना है। आरी आरी आरी गिदरी मेरी गिदरी। ये गाना बॉम्बे रॉकर्स इस बैंड ने बनाया जो कि यूरोप में शुरू हुआ था पंजाबी और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके। बैंड के सिंगर नवजोत सिंह जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उनकी मुलाकात हुई म्यूजिशियन थॉमस से। फिर आगे चलकर उन्होंने अपने बैंड का पहला एल्बम रिलीज किया। देश विदेश में उनके गाने बहुत पॉपुलर होने लगे, लेकिन एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं उनके गाने फीके पड़ने लग गए, यानी कि उनकी पॉपुलरिटी धीरे धीरे कम हो गई। फिर धुरंधर फिल्म के जरिए उन्हें एक ऐसा चांस मिला फिर से कमबैक करने का उनके पहले गाने

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
3: हर दिल की आवाज बने.
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है.
3: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे. अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात. MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है.

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करियर गाइडेंस प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचे मग जाणून घ्या। लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हायर एज्युकेशन एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:00 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174124।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: पे फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे,

0: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: अरे देख रहे हैं
2: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं
2: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा
2: तो क्या हुआ भाई।
1: हाँ तो हज़ार